0: दर मंगळवारी रात्री 9 वाजता आणि पुन्हा प्रसारण दर शुक्रवारी रात्री 10 वाजता फक्त रेडिओ नगर 90.4 FM वर.
1: नमस्कार, मैं हूँ मधुशन आचल और आप सुन रहे हैं रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमच्या.

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात सांज रंग आरजे अनुसोबत।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात सांज रंग आरजे अनुसोबत।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।